ओके जी, मोहित मरवत फ्रॉम कोटकर, थैंक यू सो मच मोहित, वेलकम। और जितनी भी कॉल्स आए, जितनी भी मैसेज आए, किसी की अगर कॉल हमने शामिल नहीं की, किसी की अगर मैसेज हमने शामिल नहीं की, तो उससे आई एम रियली एंड एक्सट्रीमली सॉरी। और इंशाल्लाह कल आप लोग आए, मैसेजेस भी और कॉल्स भी हम जरूर लेंगे, क्योंकि ये शो है आपके लिए, ये प्रोग्राम है आपके लिए, और असाम लोधी आता ही आपके आप लोगों के लिए है। तो फिर जरूर इंशाल्लाह हमारे साथ आया करें, हमारे साथ शराकत कर लिया करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जितने भी हमारे सुनने वाले, एक दफा जरूर इजना कॉस्मेटिक पाकिस्तान को ट्राई कर ले, इस्तेमाल कर ले, इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे रिजल्ट आप लोगों को, जरूर मिलेंगे। अगर ना मिल जाए तो फिर आए प्रोग्राम में, गिला करे, शिकवा करे, जो भी, आसाम लोधी फिर ताबेदार।

0: رنگ عمل. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बदोसूटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
4: बीमारी हक दे अवेला जी सुनत अमल ले। अवेला जी सुनत अमल ले।
5: ओस कचेरे तासु तदासे अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ी दली हो। ढेर गर्जिदली कड़ी दली हो।
4: नो बिल्कुल मायूस के गई माँ, मायूस के गई माँ। अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े और द हकीम मौलाना नूरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले शे।
5: और दोनों मालूमातों दे पारा पदक नंबर कॉल कवले शे
4: 0319-55-23-404।

0: It's 1:30 PM. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन।

0: हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन्फ़े खून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

0: You are listening to Radio Amon Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Welcome to Radio Amon 88.4.
3: It's 2 o'clock.
4: It is 2 o'clock.
3: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: Welcome to Radio Aman 88.4.
0: You are listening to Radio Aman Network.
1: Got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
5: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
6: बीमारी हक दे अवेलाजी सुनत अमल दे, अवेलाजी सुनत अमल दे।
7: ओस कचेरे तासु तदा से अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ी दली हो, ढेर गर्जिदली कड़ी दली हो।
6: नो बिल्कुल मायूस के गई माँ, मायूस के गई माँ। अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े और द हकीम मौलाना नूरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले तरला सकवले शे।
7: और दोनों मालूमात दे पारा पदग नंबर काल कवले शे
6: 0319-55-23-404।

0: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की नशरियात। हमारे साथ रहिए।

तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात, हमारे साथ रहिए।

अधिकारी इनायतुल्ला सईदा होलसेलर डीलर पशद बाजार कम खेंदन जमा आवाज जरूरी पशद बाजार के नवलता कारी इनायतुल्ला दे जिले बाजवड़ की चिकम दा पशद बाजार दे दसर जमंग तमाम प्रोडक्ट मिलाएगी सईदा और खार बाजार के डॉक्टर अली खान दे एडमोर पम्प के और पड़ाखाने कुसे की दुकान दे तमाम प्रोडक्ट सर मिलाएगी अनाज के लिए की बैंक मार्केट की कारी तहसीनुल्ला सर मिलाएगी पखार बाजार के डॉक्टर अली खान दे और चारमंग बाजार के कारी इरशाद दुकानदार दे लीसम बाजार के नसीर कॉस्मेटिक स्टोर सर मिलाई हुई।

शावली और हमिद दुकानदार ने एड्रेस शगई रोड बिलमकाबिल वाबडा आबिस करक मैन सीडी के हमिद सर मिलावी के दुआ सलाम के भी मौलाना अब्दुल खालिक साहब मंगल मेला खैबर प्लाजा वाच वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहु मौलाना अब्दुल खालिक साहब करक वाच पकर रेडियो बंद आवाज ओके खैबर प्लाजा दुकान नंबर 4 के तमाम प्रोडक्ट जमा दी हो गो।

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91 DA Khan Radio Pegram 97.4 Pahadpur and Radio Aman 88.4 Dhaka. जी जनाब, तीन बड़े रेडियो स्टेशन और एक आवाज, और ये आवाज है केसन नेचुरल पाकिस्तान की। दुनिया में हजारों। तो सामने ग्राम, कैसे हैं आप सभी लोग? इन तीनों बड़े शहरों के अंदर रहने वाले तमाम गर्ल्स एंड बॉयज, मुझे सुनने वाले तमाम गर्ल्स एंड बॉयज, अंकल एंड आंटीज, चाचा एंड चाचीज, माम एंड मामीज, दादा एंड दादी, जैन नाना एंड नानीज, ऑफ कोर्स सभी सुनने वालों को खलील ताबे शामान का सलाम। ढेर सारी नेक तमन्नाएं, ढेर सारी दुआएं आप तमाम लिसनर्स के नाम। जनाब कैसे हैं? तो कैसे हैं आप सभी लोग? जनाब बिल्कुल जी खैरियत के साथ होंगे, अफियत के साथ होंगे। और जनाब दिन का बेशतर हिस्सा जो है चार बज चुके हैं जनाब, और चार बजते ही जनाब आपको केसन की आवाज सुनाई देती है तीनों रेडियो स्टेशन से एक साथ। जनाब दिन का बहुत सारा हिस्सा आप लोगों ने गुजार दिया होगा, और इस वक्त हम आप लोगों को रिफ्रेश करने के लिए, आपको बेदार करने के लिए, आपको नींद से जगाने के लिए जनाब कोशिश हमारी भरपूर होती है कि आपको चार बजे चाय के एक कप के साथ, जी जनाब चाय के एक कप के साथ और केसन की ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी काम की और अच्छी बातों के साथ आपको जनाब बेदार करें, आपको जगाएं कि जनाब एक दफा फिर से उठिए और दिन भर के जो बकाया काम है, जो अभी रहते हैं, जिनको आपने क्लोज करना है, जल्दी से जनाब चाय पीजिए, खुद के अंदर फिर से एनर्जी पैदा कीजिए और एक दफा फिर से शाम तक या इशा शाम के बाद तक, कुछ लोगों के भी काम होते हैं, और उठिए और जनाब अपने काम को, हाँ अपने कामों को इख्तिताम पसंद कीजिए। मुझे सुन रहे हैं जनाब इस वक्त आप तीनों रेडियो स्टेशन से एक साथ, मुझे मेरी आवाज आप सुन रहे होंगे डेरा इस्माइल खान में ग्लोबल एफएम 91 के स्टूडियो से पहाड़पुर के अंदर और उसके गिर्द नवा के इलाकों में सुन रहे होंगे आप मुझे रेडियो पैगाम 97.4 के तवज्जो से, और टांक शरीफ में हम मुझे टांक, वैसे शरीफ लगता है टांक के साथ या मैं ही लगा देता हूँ जनाब, जनाब टांग में रहने वाले लोग जो है सुन रहे होंगे आप अपने इकलौते एफएम रेडियो अमन 88.4 से। तो जनाब तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद एक दफा फिर से जनाब, और पूरा एक घंटा जनाब केसन का आप लोगों के साथ होता है और ढेर सारी बातें होती हैं, और ढेर सारी बातें खाली खुली नहीं होती जनाब, चाय के एक कप के साथ। वो कहते हैं ना कि कल्ला चादा कप ना होवे, कल्ला चादा कप ना होवे, गप शप होवे, सातू नेड़े बैठा होवे, सातू नेड़े बैठा होवे, बंदा होवे सपना होवे। ठीक है जनाब, तो चाय के इस जबरदस्त किस्म के मजे के साथ और साथ साथ में जनाब आपको केसन के प्रोग्राम की जनाब दिल को छू लेने वाली बातें, और आज किस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, केसन की कौन सी प्रोडक्ट आज आपको हम बताने वाले हैं, और ये केसन की आज की जो प्रोडक्ट है सामिनी ग्राम, ये इतनी प्यारी प्रोडक्ट है, और सबसे ज्यादा केसन की जो बिकने वाली प्रोडक्ट है ना इस वक्त मार्केट में, जिसके लोग अब दर्जनों में ऑर्डर नहीं देते हैं। जी जनाब, और आज मैं ये सवाल कर रहा हूँ, और जिसने भी इस सवाल का सही जवाब दे दिया, मैं जो है अपना हेल्पलाइन अभी से एक्टिव कर रहा हूँ 03449363366। इस प्रोडक्ट के ऊपर बाद में हम बात करेंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को डेरा इस्माइल खान टांक और पहाड़पुर के लोगों को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ अपने तरफ से, और देखते हैं कि इस सवाल का जवाब कौन दे पाता है। जिसका भी जवाब ठीक हुआ, ठीक है जनाब, उसको केसन की तरफ से, मेरी तरफ से एक अच्छा सा गिफ्ट जाएगा। तो ये सवाल जो मैंने कहा है कि भाई केसन की आज हम जिस प्रोडक्ट के हवाले से बात करने जा रहे हैं, जी इसकी सेल अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बढ़ गई है कि अब होलसेलर तो पहले भी कार्टनों में ऑर्डर देते हैं ना, जो होलसेलर होते हैं वो तो कार्टनों में ही ऑर्डर देते हैं, लेकिन अब आम दुकानदार भी इसका दर्जनों में ऑर्डर नहीं देते हैं और कहते हैं कि भाई कार्टन भेजना इसका, ठीक है ना, ऑर्डर जब भी आता है कार्टन भेजना, दो कार्टन भेजना, एक कार्टन भेजना,
दो कार्टन भेजना, या कभी कभी को बोल दे कि भी आधा कार्टन भेजना। तो आज आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है जनाब, जिसने भी सही बता दिया, और है आपके पास टोटल 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर आप लोगों ने कॉल करनी है जनाब। और अगर आपको अभी पता चल गया है तो तुक्का भी लगा सकते हैं, हो सकता है आपका तुक्का लग जाए जनाब। लेकिन जिसका भी तुक्का लग गया, या जिसने वाकई जिसको समझ आ गई कि आज हम किस प्रोडक्ट के हवाले से मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि ये केसन की इतनी फेमस प्रोडक्ट है, केसन की इतनी मशहूर प्रोडक्ट ये बन गई है कि अब इसकी सेल कार्टनों में पहुंच गई, और ये अल्लाह ताला के फजल करम की वजह से हुआ है, आप लोगों की बेपनाह मोहब्बत की वजह से हुआ है कि इस प्रोडक्ट को आपने इतना पसंद किया है कि जनाब अब इसकी डिमांड इतनी है कि ये इसकी सेल अब दर्जनों में नहीं है, दो दर्जनों में दुकानदार ऑर्डर नहीं देते, क्योंकि दुकानदार को पता है कि अगर एक दर्जन मंगाऊंगा तो इनकी सप्लाई तो एक हफ्ते में होती है, तो एक हफ्ते में तो जनाब ये फौरन दूसरे तीसरे दिन खत्म हो जाएगा। तो दुकानदार को पता होता है कि भाई एक हफ्ते में इसने कितना बिकना है, कितना बिकने वाली ये प्रोडक्ट है, तो वो अब कार्टनों के अदर ऑर्डर में देते हैं। तो आपने अभी तुक्का लगाना है जनाब, डेरा टांग और पहाड़पुर के लोग, जिसका भी जवाब सही हो गया, जिसने भी सही बता दिया कि आज मैं जिस प्रोडक्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ वो कौन सी प्रोडक्ट होगी, तो जनाब हमारी तरफ से उनके लिए एक बहुत खूबसूरत सा इनाम होगा, ठीक है जनाब। हमारा नंबर है 03449363366, 03449363366, ठीक है जनाब। एक दफा फिर से सुनिएगा, एक दफा फिर से 03449363366, 03449363366 जनाब। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना तुक्का लगा सकते हैं, और अगर तुक्का नहीं तो इसका सही जवाब दे सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों के कॉल जो है इतने जल्दी नहीं लेता हूँ, आधे घंटे के बाद लेता हूँ, तो बहुत सारे लोग जो है वो आधे घंटे के बाद भी, हमें पता है कि आधे घंटे बाद भी ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो जो लोग सुन रहे हैं जनाब शुरू से, जो हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, आज उनका इम्तिहान है, और देखते हैं कौन हमारे इस सवाल का सही जवाब दे पाता है।

0: जी जनाब, और फर्स्ट कॉलर हमारे साथ आ चुके हैं इस वक्त, और देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
1: सोनिया अवान ग्रिड रोड से।
0: जी सोनिया अवान, आप ही हमारे साथ मौजूद हैं ग्रिड रोड से, ग्लोबल एफएम 91 को सुन रही हैं। तो बताइएगा, हमारा सवाल आपने सुन लिया होगा, आपका तुक्का है या आपको पता है? वैसे
1: कौन सा पता है? हाजमा कंट्रोल सिरप।
0: अच्छा जी, आप ये कह रही हैं कि केसन का ये जो हाजमा कंट्रोल सिरप है, ये आप कार्टनों में पहुंच चुका है इसकी से?
1: बिल्कुल।
0: अच्छा चलो ठीक है, चलो जी
1: सोन। मैं आ रही हूं, आप ठीक है?
0: मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जी खैरियत से ठीक हूँ। आप माशाल्लाह शुरू से प्रोग्राम सुन रही होती हैं, बहुत शुक्रिया आपका।
1: शुरू से सुन रही थी।
0: और आपका हमने नाम लिख लिया, देखते हैं कि दूसरे सामीन हमें क्या कहते हैं। ठीक है जी, सब सुनने वालों को सलाम। सोनिया अवान आप ही हमारे साथ मौजूद थी, और वो कह रही हैं जी जनाब, और जी जनाब हाँ जी कौन है कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम खलील भाई, खैर नाल पहुंच आए हो? जी जनाब अल्हम्दुलिल्लाह खैर नाल हम पहुंच आए हैं, लेकिन आपने आज हमें सवाल का जवाब देना है। वैसे सिर्फ इस वक्त हमें जो है सोनिया अपी ने कॉल करके तुक्का लगाने की कोशिश की है, या देखें क्या कहते हैं। एक और कॉलर आ चुके हैं जी, अस्सलाम वालेकुम।
2: जी वालेकुम सलाम।
0: जनाब कौन है हमारे साथ इस वक्त?
2: मैं साजिद बात कर रहा हूँ, पाठकोट भगवानी।
0: अच्छा भगवानी से साजिद भाई बात कर रहे हैं। भाई आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं वैसे?
3: He wants to start selling online.
2: नहीं, काफी पहले तीन साल पहले आप जो प्रोग्राम सुनते थे, ये केसन का प्रोग्राम लगता था यहाँ पे, तो अभी फर्स्ट टाइम ये मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, तो ये अभी मैं नहीं अभी मुझे इल्म नहीं है इस बात।
0: तो आप तुक्का नहीं लगा सकते कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो आप दुकानदार कहते हैं कार्टन भेजना? भाई तुक्का लगा दें, अगर नहीं पता शायद हो सकता है आपका तुक्का भी लग जाए।
2: नहीं मुझे बस वो केसन हेयर ऑयल का पता है, उसके किसी प्रोडक्ट का नहीं इल्म मुझे।
0: अच्छा हेयर ऑयल का आपको अच्छी तरीके से पता है, क्यों आपने खरीदा है या सुना है केसन ऑयल के बारे में?
2: जी जी बिल्कुल खरीदा है, अच्छा ऑयल था।
0: अच्छा अच्छा ऑयल था आपने इस्तेमाल किया, यानी कि इसको बाकी और कोई चीज केसन की नहीं खरीदी आपने?
2: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं खरीदा।
0: अच्छा चलो अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है कि आपने सिर्फ हमारा ऑयल खरीदा है, बाकी चीजें जो फेस के हवाले से हैं, जैसे कि हमारे सोप्स हैं या फेस वॉश है, उनको भी जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप उनसे भी सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है
2: भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। बस मैं एक्चुअली ना बस ये FM यूज नहीं कर रहा था, इसलिए ना फिर दूसरी चीजों का इल्म नहीं था।
0: हाँ बस अभी इंशाल्लाह रेगुलर सुनेंगे। हमारा ये टी टाइम होता है, चाय मिल चुकी है आपको या अभी तक नहीं मिली चाय?
2: चाय तो मैंने पी चुका हूँ मैं।
0: अच्छा पी चुके हैं, यानी कि आप टी टाइम जो है मना चुके हैं हमारे साथ?
2: बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।
0: चलो चाय
2: जी जी जी तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम।
0: जी जो ठीक हो गया जनाब, आपकी तरफ से सलाम लोगों को पहुंच गया, बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो वेरी मच। और भाई कह रहे हैं कि इन्होंने ऑयल के बारे में सुना।

0: जी आप लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं धड़ाधड़ और लोग तुक्के लगा रहे हैं। तो पहले भाई ये पहले सोनिया आप ही ने कहा कि हजमा कंट्रोल सिरप केसन का जो है वो अब उसकी सेल इतनी हो गई है कि दुकानदार कहते हैं कार्टन भेजना। ठीक है जनाब, भाई थे उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ ऑयल खरीदा है और ऑयल के बारे ही मुझे पता है। तो जनाब एक और कलर हमारे साथ आ चुके हैं, इनाम देने जा रहे हैं जनाब हम आपको अगर सवाल का सही जवाब आपने बता दिया। देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह
0: वबरकातुहू। जी कौन है हमारे साथ मोहतरम?
1: अयूब राय हिम्मत।
0: अयूब राय बस्ती हिम्मत स्कूल सही बुंगर से बाद सब कुछ ज्वाइन किया है वे। किवें हाल है सही? खैर खरियत नाली वे ठीक ठाक?
1: शुक्र शुक्र खैर खरियत दे जनाब।
0: अच्छा प्रोग्राम सुनते पे वे तो के जवाब हो सी सही? आज तो जरा सारा सवाल है तो आपको हाजमा कंट्रोल सिरप लगता है कि ये माशाल्लाह इतना पॉपुलर थी चुका है कि काटना तो नहीं। चलो ठीक है अयूब भाई सारे नाल रवे तुसा इंशाल्लाह। ठीक है सही। ते अयूब भाई सारे बहु पुराने कलर इन सही बहु पुराने यूजर इन असा छोटे छोटे होंदे निक्के निक्के बाल होंदे असे जेले रेडियो सुनदे असे ते अयूब भाई दी कॉल आंदी ते मैसेज आंदे हन सही। जी जनाब अयूब भाई कह रहे हैं कि हाजमा कंट्रोल सिरप है। ठीक है जनाब और देखते हैं जी और कौन है हमारे साथ। ये कौन है जी जनाब? मैसेजेस भी आपके आए हुए हैं और साकू छोड़ के शाकिर गलिया विच केरा बख्त लगई मैं को दस्ता सही। अच्छा जी रोनी फ्रॉम बाड़पुर सलाम भाई कैसे? एंड आज फिर सर्दी सर्दी आज फिर सर्दी है आप तो गरम गरम चाय पी रहे हैं। कहते हैं कि जो लोग गर्मी में भी चाय नहीं छोड़ते ना जो लोग गर्मी में भी चाय नहीं छोड़ते उनकी वफादारी के ऊपर कभी मत शक करना। बहुत ही वफादार होते हैं। शदीद तरीन गर्मी में चाय पीने वाले लोगों की वफा के ऊपर कभी भी चेक मत करना। अच्छा जी इन्होंने कुछ नहीं बोला, मैं वो मैसेज पढ़ रहा हूँ कि अगर आपने ये कहते हैं आमिर अमान पाकिस्तानी ये कहते हैं कि आज मैंने इनको चोरी चोरी देखा है। कमजोर हो गए वो शहजादे, क्या हो गया? खा पी नहीं रहे वो कुछ। मनु चुंग के ऊपर मैंने इनको देखा बहुत ही कमजोर से लग रहे थे। आमिर अमान पाकिस्तानी कहते हैं जी हाजमा कंट्रोल सिरप है। एक और भाई ये कहते हैं भाई हाजमा कंट्रोल सिरप है। और भाई ये तो बताए खाने वाली चीज है या लगाने वाली चीज है? अच्छा चलो ठीक है ये भी सही बात है। अब खाने वाली हमारी तीन चीजें हैं तो भाई ये खाने वाली चीज नहीं है। चलो जी एक और इशारा आपको दे रहे हैं। ठीक है जनाब आप फिर से ट्राई कीजिए। ये खाने वाली चीज नहीं है भाई, लगाने वाली चीज है। ठीक है जी ये हमारी इस वक्त जो है केसन कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली सबसे ज्यादा सेल होने वाली ये प्रोडक्ट बन चुकी है और इसका बैच हर हफ्ते फ्रेश बैच तैयार होता है। हर हफ्ते का मतलब समझते हैं कि हर हफ्ते जब बैच आपको रिसीव हो फिर वो कितनी क्वांटिटी का होगा और वो कितना ज्यादा बिकने वाला होगा। तो चलो जी एक हिंट मैं आपको और देता हूँ जी। केसन की ये प्रोडक्ट जो है वो खाने वाली नहीं है, लगाने वाली है। कुछ लोगों ने कहा हाजमा कंट्रोल सिरप, ठीक है जनाब, तो वो तो पीने वाला है। ठीक है जनाब हाजमा कंट्रोल सिरप जो है नो डाउट वो भी बहुत अच्छी सेल में है और उसका भी अब मैं आपको बताऊं कि ईद के बाद क्योंकि ये शॉर्ट था तो ईद के बाद हमें जितने भी दुकानदारों के ऑर्डर रिसीव हुए ना बशमूल डेरा बशमूल टांक बशमूल पहाड़पुर मुझे याद नहीं है कि किसी को ओपन गया हो ऐसे शापर में डालकर दो दर्जन तीन दर्जन एक दर्जन किसी को गया ना, ये नहीं हुआ बिल्कुल भी। ये प्रोडक्ट भी ऐसे ही है कि ये भी अब कार्टनों में जा रही है लेकिन ये तो इस वजह से पॉसिबल हुआ है कि शॉर्ट थी बहुत ज्यादा। ठीक है जनाब 12-15 दिन ये शॉर्ट थी तो दुकानदार डर रहे थे कि यार ये फिर से शॉर्ट ना हो जाए तो इसका इकट्ठा स्टॉक मंगवा लेते हैं ना। ठीक है जनाब तो भाई जिन्होंने हाजमा कंट्रोल कहा वो तो हो गए गलत।

0: जनाब एक और कॉलर हमारे साथ हैं और देखें ये तुक्का लगाते हैं या क्या कहते हैं। जी कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो। वालेकुम सलाम। हलवाया।
0: हाँ हलवाया जी, हमारी जो है कौन सी आप हैं? कौन से वाली? कौन सी नंबर वाली? हाँ जी कौन सी नंबर वाली आप हैं हमारी?
1: ना इंसाफी हुई है, इनाम की कैटेगरी से निकाल दिया गया है।
0: कि किस तरह? ये कैटेगरी जो थी ना,
1: देखिए कूपन में मेरा नाम नहीं आता ना।
0: अच्छा कूपन में आपका
1: तो अभी जो मेरा इनाम निकले ना किसी और को दे देना।
0: नहीं, अगर आज आपका कूपन से हमने नाम इसलिए निकाला कि हम तो आपके साथ बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं ना। हाँ जी हाँ, वो रेट तो हम आपको देते नहीं है, जो लोगों को देते हैं तो हम कहते हैं तो मुझे बताएं, चलो तुक्का लगाएं, कौन सी प्रोडक्ट हो सकती है आपकी नजर में?
1: ऑल टू ऑल केसन प्रोडक्ट, ऑल टू ऑल
0: केसन हेयर ऑयल का आप कह रही हैं? सानापी
1: नहीं, ऑल टू ऑल मुझसे पूछेंगे तो हर चीज
0: नहीं आपसे तो पूछेंगे, लेकिन आप इसका जवाब एक कोई प्रोडक्ट बता के जाएंगी ना, ऐसे थोड़ी है।
1: अच्छा जिस प्रोडक्ट ने मुझे मुतासर किया ना, ग्लूटा वाइट क्रीम।
0: अच्छा आप कहते हैं कि ग्लूटा वाइट क्रीम हो सकती है ये जो आप कार्टनों में सेल है, आपका जवाब हम लेना चाहते हैं, ये जवाब है आपका। चलो ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जो है स्वान आप ही थी मौजूद, और एक कॉलर आ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम।
2: अरे सलाम अंकल असद बात कर रहा हूँ।
0: जी अंकल असद टांग से हमारे साथ, कैसे हैं मोहतरम?
2: मुझे बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि कल से दो महीने तक हम आपकी प्यारी प्यारी की बात नहीं सुन पाएंगे।
0: क्यों?
2: लकी जा रहे हैं, लकी बहुत है।
0: अच्छा जी लकी, हो सकता है हम लकी में भी आ जाएं आपके लकी
2: 88। नहीं, नहीं, वो टेलीफोन मोबाइल पर तो खैर वो होगा, क्या नाम है, रास्ता होगा होगा, लेकिन आपकी बात से महरूम रहेंगे।
0: नहीं मैंने क्या, हो सकता है हम लकी 88 के ऊपर आ जाएं तो फिर उधर सुन लेंगे।
2: उधर अगर आएंगे तो कर तकरीबन 4-5 वो लेता है प्रोडक्ट।
0: अच्छा जी ठीक है,
2: मांग है तो ले जाना है, और फिर दो महीने तक बस मोबाइल पर बात होगी और आप टीवी मीठी बातों से महरूम रहेंगे।
0: चलो
2: करें कि आप लकी फोन कर दे, फिर मजा आ जाएगा।
0: इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह, हम कोशिश में हैं कि लकी 88 को भी साथ
2: में। लकी तो बहुत बड़ा वो आया और बहुत प्यार हो गया, बहुत प्यार हो गया पूरा, यकीन अगर आप फोन करें तो लोग बहुत करेंगे, शायद करेंगे।
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, बस आप जा रहे हैं हमारी तरफ से तो आप हमारे नुमाइंदे हैं लकी में, तो इंशाल्लाह हम भी भरपूर कोशिश में होंगे कि जनाब हमारा एक
2: इंशाल्लाह।
0: ओके जी ओके जी, तमाम सामीन को खुदा हाफिज कह रहे हैं। और अच्छा जी मुझे तो हाजमा कंट्रोल सिरप लगता है, अजहर भाई हैं। अच्छा जी कहते हैं कि हमें तो अच्छा जी किसी ने तुक्का लगाया कि ग्लूटा वाइट क्रीम है। ठीक है जनाब, राजा गफूर की कॉल लेते हैं, शायद इनका तुक्का लग जाए, फिर उसके बाद मैं आपको जवाब बताता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। सही कि मैं हाल है ठीक ठाक
2: सर जी?
0: जी जी सर जी
2: ठीक
0: है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज जैसे एक सवाल पूछी बैठे हैं, उन्होंने तो इनाम ही रखी बैठे हैं सही तौरे पास से। हाँ आमीन आमीन जुम आमीन, तसा के सही सारी हिक प्रोडक्ट इतनी पॉपुलर थी चुकी है कि हुन दुकानदार उनका दर्जन नहीं मंगवाया, आदन के कार्टन भेजो ते तुसे इंशाल्लाह आवण दी मैं कोक्सो के खलील भाई दा कार्टन भेजा करो, तो तारे अंदाजे चो केरी प्रोडक्ट थी सकती है जेरी हुन कार्टन च पहुंच गई? शिफाए दर्द है, सही चलता पे लोगों को किवें सुकून मिलता पे शिफाए दर्द नाल? सही
2: मैं ठीक ठाक पैदल भी चलता वादा मोटरसाइकिल भी चलता वादा और कारोबार भी करता
0: वादा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह के वो बंदा जरा के कमर ते हाथ रख के उड़दा यानी कितना दर्द होना है उन्हें त्रै दवा इस्तेमाल की तो माशाल्लाह सारे कम कर लेते जी। आज राजा कपूर साहब तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा कटती पई है बहुत ज्यादा तो बहुत मेहरबानी शुक्रिया जनाब इनका और ये पंजाब से हमारे साथ होते हैं ठीक है जनाब और इनके पास हमारा सेल पॉइंट है और माशाल्लाह इनके पास जिस दुकानदार के पास जिस चीज की बिक्री ज्यादा होती है फिर वो यही सोच रहा होता है कि ये शायद ये प्रोडक्ट है। चलो जी तो बहुत सारे लोगों ने कहा हाजमा कंट्रोल सिरप ठीक है जनाब और जो है उसके बाद हमारे साथ शाहजहां मेंबर हैं जनाब उनको भी हम मौका दे रहे हैं इस वक्त। जी अस्सलाम जी जी अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम सर खान
0: सर की हाल है तुसा ठीक ठाक है वे चंगे वदे वे सही
3: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर
0: प्रोग्राम सुनते बैठे वे सही ब्रेक थी बहुत ज्यादा मुतासर हैं सारे शिफाए दर्द कोल के भाई ये प्यारी प्रोडक्ट बढ़ गई लोगों को कसम चाह के आधे पहने साधे कसम न चाहते करो लेकिन वो बात माशाल्लाह आधे पहन कसम चाह के आधे पहन के एक बंदा त्रै दिवार लावण बिल्कुल हशाश बशाश थी गया उनका दर्द खत्म थी गया लाजवाब है हर सब हर प्रोडक्ट लाजवाब है केसन भी अच्छा भी तुसा इस्तेमाल की तो है तुसा जरा तुक्का लो आना सही एक प्रोडक्ट सारी बहुत ज्यादा ही वक्त मशहूर थी चुकी तो इलाके इवे जो मैदा पहाड़पुर का इलाका जो है ना पहाड़पुर वाला उत्ता था बस हर दुकानदार काटन के अलावा उनकी गाल नहीं होती बल्कि आज सकू एक दुकानदार ने कॉल करके कह भाई मेरे डू काटन रख छोड़ो यानी कि उन्हें आके डू काटन भेजने वे एक भी नहीं तो कहरी प्रोडक्ट
3: हर हर बंदा
0: हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जी काटन ओ भी गाल ठीक है बिल्कुल बड़े थोड़ा जिया प्रोडक्ट सारे शार्ट तो पता है कि उतना जे बंदा मसरूफ आंदा तो बै प्रोडक्ट नहीं वही सकता ना ठीक है इंशाल्लाह वो फार्मूला सारे को मौजूद है अस फार्मूले को गिन के आसू क्योंकि जहरे बंदे को असर दी तुहरे अलकारी में आदे कि भाई ये तो लिवन ना करने वाली शायद बिल्कुल हाजमा कंट्रोल सिरप दे पे चलो ठीक है सही ठीक है सही बहुत मेहरबानी सही शुक्रिया नवाज़िश मेंबर शाहजहां सारे नाल मौजूद हैं जी जनाब। अच्छा जी बस अब जो है वो खत्म करते हैं क्या होते हैं सस्पेंस आपका खत्म करते हैं पहाड़पुर से कौन है जी जनाब हाय अस्सलाम वालेकुम आई एम हीरा फ्रॉम पहाड़पुर और आप यकीन कीजिए ये पहली जो है ऐसे दूसरा मुझे देखने दे दूसरा कौन है इनाम मुझे दे अच्छा जी ठीक है जी तो भाई ये यकीन कीजिए ये अभी 4:25 पर ये जो मैसेज आया है अस्सलाम वालेकुम आई एम हीरा और ये हमारी पहली कॉलर है आप यकीन कीजिए ये पहले पहला मैसेज है इनका इससे पहले इनकी कोई चैट भी नहीं है 4:25 पर इनका मैसेज है आई एम हीरा फ्रॉम पहाड़पुर सर्वो केसन शैम्पू है तो आप यकीन कीजिए कि भाई बिल्कुल सही पहचाना इन्होंने और सबसे पहला मैसेज मेरे ख्याल में इन्होंने किया है हमारे शो में पहली दफा आई है और पहला ही जवाब ठीक है बिल्कुल सही कहा केसन शैम्पू ही हमारी वो प्रोडक्ट है इस वक्त जो दुकानदार अब कार्टन से कम नहीं मांगते जी अस्सलाम वालेकुम एक और कॉलर है
4: वालेकुम सलाम भाई
0: जी कौन है हमारे साथ नाम बताइएगा
4: अमन बात कर रही हूँ डियाल रोड से
0: अमन बात कर रही है डियाल रोड से अमन कैसी हैं आप ठीक हैं खैरियत से हैं
4: जी भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ
0: आप 91 को सुन रही हैं आप इस वक्त
4: जी
0: प्रोग्राम सुनती रहती हैं या पहली दफा आज सुना आपने
4: जी नहीं सुनती रहती हूँ
0: अच्छा सिर्फ सुनती रहती हैं या हमारी बातों का कोई असर होकर केसन का कुछ लगा भी रही हैं
4: भाई मैंने गो पिंपल फेस वॉश लिया था और ब्यूटी स्प्रे लिया था ना, तो फिर वो समझ नहीं आती को कैसे आपकी पैकिंग कैसी थी, समझ यही नहीं आ रही।
0: फेस वॉश ट्यूब होती है और स्प्रे जो है ना इस तरह होता है सिंपल सा, तो इसमें समझने वाली कोई बात है वैसे?
4: जी नहीं भाई, बस वो समझ नहीं आ रही।
0: अच्छा, उसको इस तरह समझना मेरी बहन कि आपने फेस वॉश से चेहरे को धोना है तकरीबन 1.5 मिनट तक, 1.5 मिनट जितना टाइम देंगी ना उतना ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं तो वो जज्ब होते हैं स्किन के अंदर, ठीक है
4: जी? ठीक।
0: तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने अपने चेहरे को वॉश कर लेना है 1.5 मिनट तक मसाज करके, ठीक है? उसके बाद जैसे धो लें पानी से, खुश्क करने के बाद जैसे चेहरा खुश्क हो जाए तो फिर आपने ब्यूटी स्प्रे को लगाना है अपने चेहरे के ऊपर, ठीक है? और उसको यानी कि उसकी तह आपकी स्किन के ऊपर रहनी चाहिए ब्यूटी स्प्रे की, ठीक है? तो वो फिर आप बस यही तरीका कार है इसमें, सिंपल इज दैट, ठीक हो गया?
4: जी भाई, मैंने वो पूछना था कि मंदरा या कोकार में आपकी ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगी?
0: मंदरा या कोकार में, मंदरा कला में कहाँ पर, कहाँ पर? मंदरा में हमारी एक सिस्टर है, खून की सिस्टर नहीं है, मेरी लिस्टनर है, मंदरा में सारा गुल होती है, सारा गुल घर के
4: सारा गुल,
0: सारा गुल उनका पता करें, मंदरा में सारा गुल कहाँ पर है, उनके पास केसन के सारे प्रोडक्ट होते हैं। और कोकार के अंदर जो है वहाँ पर आप पता करेंगे ना अलजन्नत बेकरी, अलजन्नत के ऊपर, ठीक है जी?
4: तो
0: वहाँ पर मिल जाएंगे आपको, ठीक हो गया
4: जी? ठीक है, शुक्रिया आपका।
0: ओके जी, वेलकम, थैंक यू सो वेरी मच जी,
4: अल्लाह
0: हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। और ख्याल रखिएगा और फेस वॉश को इस्तेमाल कीजिए, गो पिंपल को, और साथ में ब्यूटी स्प्रे को इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा जी, हीरा आपको मुबारक हो, और आपने तुक्का लगाया है या जो भी किया है भाई, इन्होंने कमाल किया है, यही सवाल और मैं इसकी ही तैयारी करके बैठा हुआ था कि इसके ऊपर आज बात

0: जनाब केसन शैम्पू द रेवोल्यूशन जी कॉल है, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है सारे नाल नाद से सो अपना मेहरबान अले ने पेन पहाड़पुर कोल किवें हाल है? सही चंगे वदे वे तुसा ठीक ठाक? घर पहुंचे वदे वे या डेरे वदे वे पहले मैं को ये दसो तुसा? अच्छा वेले ते घर पहुंच गया वे, प्रोग्राम ही सुन दे पे वे। चाह पीती वे कि नहीं वे पीती हाल तक? चाह
1: चाह पीती है।
0: पीती बैठे वे चाह मन नहीं बैठे वे, मतलब दीगर मन नहीं बैठे वे हैं से? अच्छा जी, चलो सवाल दा टाइम तो गुजर गया है, ठीक है जनाब। असा पूछना चाहते हैं तो ये दसो के इस्तेमाल केसन दी आजकल कुछ थी वे ये सब से खत्म थी गई है? कैसे इस्तेमाल करने वे देवे? तेल सिरप मैदे आला? अच्छा हूं सारा जरा नवा सिरप है ये पहले को ज्यादा गाढ़ा भी है, तुसे इस्तेमाल किया लगे तो को रिजल्ट की में मजदार है रिजल्ट सारे हाजमा सिरप का है जी? मजा कर गए, ठंडक पैदा थी मैंने पूरे जिसम में। हेलो जनाब मेहरबान भाई हमारे हमसे नया वाला जो है वो लेके गए हैं हाजमा कंट्रोल सिरप, लेकिन ये यूज सारी चीजें यूज करते हैं। अच्छा ये जो प्रोडक्ट है हमारे केसन शैम्पू,

0: जनाब, अगर आपके घर के अंदर, आपके भी वॉशरूम के अंदर जो है नीली, पीली, सब्ज, गुलाबी बोतलें नजर आती हैं,
1: घना बन,
0: यानी कि एक आपका जो है बाथरूम है लेकिन उसके अंदर 5-6 रंग की बोतलें पड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपके घर के अंदर 5 बंदे हैं, तो शुमैला ने अपना शैम्पू रखा हुआ है, अली ने अपना रखा हुआ है, जीशान ने अपना रखा हुआ है, अम्मा ने अपना रखा हुआ है और अब्बे ने अपना रखा हुआ है, ठीक है जनाब। और वजह क्या होती है कि 5 को अलग अलग से मसले होते हैं, किसी के बाल गिर रहे होते हैं यानी कि हेयर फॉल होता है, किसी के सर में खुश्की होती है यानी कि डैंड्रफ होता है, किसी के बाल जो है वो सीधे नहीं होते तो उसने कोई केराटिन टाइप जो है शैम्पू रखा होता है, कोई जो है चौथे नंबर पर कौन होता है, वो होता है जनाब जिसके बाल बहुत ज्यादा खुश्क होते हैं, ठीक है जनाब, उलझे उलझे से लगते हैं या फिर कह सकते हैं कि बेजान से होते हैं, रूखे होते हैं, उसने अलहदा से अपना शैम्पू रखा होता है। तो यानी कि मुख्तलिफ प्रॉब्लम के लिए जनाब आपने मुख्तलिफ शैम्पू, क्योंकि कंपनियां बनाती हैं ना, ऐसे ही तो सीन क्रिएट करती हैं कंपनी, नीला बना लिया हेयर फॉल के लिए, ठीक है जनाब, पीला बना लिया सिल्की बालों के लिए, गुलाबी बना लिया क्या कहते हैं बालों को स्ट्रेट करने के लिए, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट किस्म के शैम्पूज होते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि जस्ट इन वन शैम्पू, जिसे हम कहते हैं केसन शैम्पू, द रेवोल्यूशन, जी जनाब, एक शैम्पू 5 हल।

के लिए शैम्पू ना मिला कहीं से और अगर आपने कोई और शैम्पू इस्तेमाल कर लिया तो आपके सामने बिल्कुल जी फर्क आ जाएगा और आप कभी भी इस शैम्पू को नहीं छोड़ पाएंगे। हमारे साथ इतनी कहानियां हैं इस शैम्पू की, आप यकीन कीजिए इतने सारे लोग आते हैं और बताते हैं कि जैसे ये खत्म होता है अगर हम साशे वाला ले लें या कोई और ले लें तो भाई यकीन कीजिए हमारे बाल गिरने लगते हैं, मसले मसाइल, यानी कि ये इतना विटामिन से भरपूर नरिशिंग फार्मूला है कि किसी और शैम्पू में इतने नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स जैसे कि विटामिन B5 है, जैसे कि विटामिन B3 है, ठीक है जनाब, ये इतनी सारी चीजें इतने सारे मसाइल के लिए हैं, जैसे कि कंडीशन का मैं अब बताएं। अच्छा जी, कंडीशनर के एक तो ये फायदा होता है, कंडीशनर प्लस जो शैम्पू होता है, एक तो उसका ये फायदा होता है कि बाल आपके स्लिपरी और सिल्की हो जाते हैं। एक और बेनिफिट है कि आपके बाल जल्दी मैले नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जब आप एक आम शैम्पू इस्तेमाल करते हैं कि जिसके अंदर कंडीशनर नहीं होता, वो आपके बालों की साख्त के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर तह नहीं चढ़ाता है। लेकिन जैसे आप केसन शैम्पू यूज करेंगे तो जनाब आपके बालों के ऊपर जो है एक तह चढ़ जाती है, स्लिपरी तह चढ़ जाती है और आप गर्दो गुबार मैल मट्टी वाली जगह से गुजरते हैं तो वो गर्दो गुबार आपके बालों के ऊपर जमती नहीं है बल्कि स्लिप होकर गिर जाती है। यही वजह है कि अगर आप केसन शैम्पू से 3 दिन तक ना नहा सकें तो आप यकीन कीजिए आपके बाल उंगलियां फेरने के लिए बेताब होंगे और आप 3 दिन भी अपने बालों में उंगलियां फेर सकेंगे, क्योंकि ये शैम्पू प्लस कंडीशनिंग फार्मूला है।

अच्छा जी, एक और बात जो बहुत इम्तियाजी है वो ये है कि जितने लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं जी, टांक में, पहाड़पुर में और डेर इस्मिल खान में, वो एग्री करेंगे मेरी इस बात से कि आप बाजार से तीन किस्म के शैम्पू ले आए ना, तीन तरह के शैम्पू, एक चीज नोट कीजिएगा कि उनकी खुशबू एक जैसी होगी, एक जैसी खुशबू होगी। अब मैं इसकी भी लॉजिक आपको बताता हूँ, लेकिन केसन शैम्पू की खुशबू किसी भी शैम्पू की खुशबू वो नहीं है जो केसन शैम्पू के अंदर मौजूद है। अब सारे कंपनियां एक ही शैम्पू की खुशबू इस्तेमाल कर रही हैं, आप कोई भी ब्रांड उठा कर देखें ना, खुशबू एक ही होगी। ठीक है जनाब, कलर नीला पीला हो सकता है लेकिन खुशबू जो होगी ना बस वो एक ही होगी। बहुत मुश्किल से बड़ी बड़ी कंपनियों के चेंज हो तो हो, अदरवाइज आपके पास जो प्रोडक्ट मौजूद है ना आपके शहरों में, उनकी खुशबू एक जैसी होगी। केसन शैम्पू की खुशबू सबसे इस वक्त हमारे शैम्पू के अंदर जो सबसे कीमती चीज है, सबसे महंगी जो चीज है ना, वो इसकी खुशबू है। कोई भी चीज इसके अंदर इतनी महंगी नहीं है, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूं क्योंकि जिसकी जो हम खुशबू इस्तेमाल करते हैं वो 38 से 40 हजार रुपए का लीटर है। सिर्फ खुशबू की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि हमारी इस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो 40,000 किलो हो, जो इंग्रेडिएंट होते हैं। ठीक है जनाब, लेकिन वह चीज है इसके अंदर जो इसकी खुशबू है 38 से 40 हजार रुपए इसका लीटर होता है, जो खुशबू हम केसन के शैम्पू के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जो दूसरी कंपनियों के शैम्पू के अंदर खुशबू इस्तेमाल होती है उसकी कीमत होती है 7 से 8 हजार रुपए लीटर। यही वजह है कि हर कंपनी वही आम खुशबू, हर किसी की वही खुशबू, आप चेक करते जाएं कोई फर्क आपको नहीं लगेगा। हर कंपनी ने एक ही खुशबू डाली होती है, वो 7-8 हजार रुपए खुशबू होती है लीटर की जो कि हर कंपनी, लेकिन हमने इसके अंदर जो डाली हुई है वो 40,000 लीटर वाली खुशबू है और वो इतनी प्रीमियम है कि आप जब नहाएंगे तो फ्रेशनेस का एहसास आपको पता चलेगा कि आपको इसने कितना फ्रेश कर दिया है और कितनी। और मैं आपको बात बताऊं कि कोई 5-6 लोगों ने हमसे फरमाइश करके ना कि भाई आपके जो शैम्पू की खुशबू है ना, हमें इसका ऑयल प्रोवाइड कर दें या इसका परफ्यूम बना दें या इसका अतर। तो हमने मेरे ख्याल में कि 4-5 लोगों को जहां से हमारा शैम्पू रेडी होता है वहां पर हमने ये खुशबू मंगवाई है, केसन शैम्पू की खुशबू जो है, और लोगों ने कहा कि हम इसे एज ए परफ्यूम इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो भाई ये इतनी प्यारी खुशबू के साथ, इतने प्यारे इंग्रेडिएंट्स के साथ, अगर अभी तक आपके पास नहीं पहुंचा ना ये शैम्पू तो आप महरूम है एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, और ये आपके घर आने की देर है। केसन शैम्पू आपके घर आने की देर है, अगर आप इसे जान छुड़वा लेना तो मैं मान जाऊंगा आपको। इसको इस्तेमाल करने के बाद अगर आप इसकी जान, इससे अगर आपकी जान छूट जाए कि आप कहें कि यार चलो केसन नहीं है तो कोई और लगा लिया, तो मैं भी जुर्माना भी दूंगा, जो कहेंगे मैं इसके वो दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई इसको इस्तेमाल करने वाले दिन ब दिन क्यों बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे ना दिन ब दिन इसकी जो सेल। आज हम बात कर रहे थे कि कौन सी प्रोडक्ट केसन की, जो अब कार्टनों में बात होती है, भाई बात दर्जनों से आगे निकल चुकी है, तो वो हमारी ये प्रोडक्ट है

0: केसन शैम्पू अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पॉपुलर प्रोडक्ट, और 390 रुपए का हमारा ये शैम्पू है जनाब। और हम आप कहते हैं कि अगर इसको आप एलोन भी इस्तेमाल करें, चूंकि गर्मियों का महीना है तो हर रोज नहाते हैं और हर रोज नहाएं, हर रोज शैम्पू करें, ये कोई हल्का किस्म का शैम्पू नहीं है कि आपके बालों को खराब करेगा, बल्कि नहाने से आपके बाल मजीद बेहतर होंगे। विटामिन B3 B5 के साथ ये बहुत ही अमेजिंग फार्मुलेशन है जनाब। तो जनाब ये है हमारी वो प्रोडक्ट, ये है वो प्रोडक्ट जनाब जिसकी सेल अब दर्जनों से निकल कर कार्टनों में जा चुकी है। और बहुत शुक्रिया पहाड़पुर वालों, बहुत शुक्रिया डेरस मिलखान वालों, और बहुत जल्दी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ इंशाल्लाह इस प्रोडक्ट के ऊपर, जिस दिन हमें टांग से कार्टनों की तादाद अभी जा रहे हैं, अभी जो ऑर्डर आया है टांग से मंसूर जनरल स्टोर से वो दर्जनों में था, ठीक है जनाब। लेकिन जो इंशाल्लाह आप जैसे लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और जितना हमारा शैम्पू कोई 100-200 बोतल शैम्पू टांक में हमारी यूज हो चुकी है, लेकिन जैसे ये यूज करेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन आप देखेंगे और मैं आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज शेयर जरूर करूंगा और आपको बताऊंगा कि टांक वालों शुक्रिया, आप लोग ने भी केसन शैम्पू की सेल को जो है आप दुकानदार के पास इतनी डिमांड करते हैं कि दुकानदार मजबूर हो गए हैं केसन शैम्पू कार्टनों की तादाद में मंगवाने के ऊपर। मुझे कहते हैं खलील दाबे जवान, ये है केसन का टी टाइम, चाय के साथ केसन का मजा, केसन की बातें, और स्पेशली हमारे ये जो प्रोडक्ट है केसन शैम्पू द रेवोल्यूशन।
1: अब डैंड्रफ का ना कोई निशान, घना बनाए दे नया गुमान, रोक के है।
0: अच्छा जी एक चीज मैं भूल जाता हूँ कि केसन शैम्पू के अंदर जो एंटी डैंड्रफ इंग्रेडिएंट है ना वो ZPT है, ठीक है जनाब। ZPT जो आप अक्सर टीवी के अंदर भी इश्तेहार देखते हैं, ZPT का इश्तेहार देख रहे होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हम भी जो डिफीट कर रहे हैं डैंड्रफ को, वो भी मल्टीनेशनल प्रोडक्ट कंपनियां जो बनाती हैं उनके हम पल्ला होकर ऐसे म्यारी प्रोडक्ट, और यही वजह है कि आज ये प्रोडक्ट हमारी इतनी पॉपुलर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। केसन शैम्पू ब्लैक कलर की बॉटल है जनाब और इसकी कीमत 390 रुपए है। आप कॉल करना चाहें तो इस वक्त हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने सवालों के जवाब दिए, बहुत सारे लोगों की गलत भी हैं, लेकिन एक ही सवाल जो है वो ठीक है। आमिर रहमान पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अगर सुहाना अभी के जवाब ठीक साबित हो तो भाई उनका इनाम आपने मुझे देना। क्यों आमिर रहमान पाकिस्तानी, आप सुहाना अभी के फूफो के बेटे होते हैं क्या?

0: भाई अगर आपको भी मसले हैं बालों के, जैसे कि आपके बाल गिर रहे हैं यानी कि आपको हेयर फॉल है, या फिर आपको खुश्की का मसला है यानी कि डैंड्रफ से परेशान है, या फिर आपके बाल जो है बहुत ज्यादा सख्त रहते हैं, उलझे उलझे से रहते हैं, उनकी लुक झाड़ू की सी लगती है, तो इस्तेमाल कीजिएगा केसन का शैम्पू।
1: पांच प्रॉब्लम्स का एक सलूशन,
0: बालों को सिल्की करने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए बहुत ही अमेजिंग फार्मूला है जनाब। आपके शहर डेर इस्माइल खान की अगर बात करें तो जनाब डेर इस्माइल खान का सबसे बड़ा ग्रोसरी स्टोर जहां पर आपको कॉस्मेटिक की सारी प्रोडक्ट मिलती हैं वो है स्टेट लाइफ बिल्डिंग के बिल्कुल सामने गुलशन कैश एंड कैरी।
2: अब डैंड्रफ का ना कोई निशान।
0: तो जनाब गुलशन कैश एंड कैरी पर जब आप जाएंगे और वहां पर आप जब देखेंगे कि जहां पर बड़े बड़े ब्रांड पड़े हुए हैं वहां पर केसन आपको सबसे ज्यादा तादाद में नजर आएगा, तो आपको समझ आ जाएगी कि डेर इस्माइल खान का जो सबसे बड़ा स्टोर है गुलशन कैश एंड कैरी, वहां पर सबसे ज्यादा लोग शैम्पू केसन का पसंद करते हैं। तो वहां पर आपको हमारी तादाद देकर समझ आ जाएगी कि वाकई यार डेरा के लोग तो सारे शैम्पू केसन ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा A1 कॉस्मेटिक है, इस्लामिया ईदगाह कॉलोनी के सामने HBL क्या कहते हैं HBL जो बैंक है उसके साथ सामने, और इसके अलावा चुगला के साथ अमान हरसेरा फारूका हरसेरा जनाब यहाँ पर आपको केसन शैम्पू मिलेगा। हाजी गुल जनरल स्टोर बागरी बाजार में है जनाब, इनके पास केसन शैम्पू अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त रहता है, और यहाँ पर जितने लोग केसन शैम्पू खरीदते हैं बहुत शुक्रिया। जफराबाद के अंदर जनाब हाजी जनरल स्टोर, हाजी जरी जनरल स्टोर एंड अब्दुल रहमान जनरल स्टोर, जो लोग यहाँ से जो खरीदते हैं केसन का शैम्पू बेहद शुक्रिया। एंड स्पेशली जब मैं पहाड़पुर की बात करूँ तो उनका बेहद शुक्रिया जनाब। अवेश जनरल स्टोर राहत की एजेंसी के बिल्कुल सामने है जनाब, जो यहाँ से हमारे प्रोडक्ट हासिल करते हैं। नवी जनरल स्टोर, जिशान जनरल स्टोर, हैदर जनरल स्टोर, हसीब जनरल स्टोर एंड जमील नियाजी जनरल स्टोर कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम।
3: सलाम
0: जनाब, कौन है हमारे साथ?
3: जी क्या हाल है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक। कह रहा मैं अल्लाह नान से सो अपना सही
3: पप्पू पकवान सेंटर रंगपुर अड्डा,
0: रंगपुर अड्डा को सही पप्पू पकवान वाले भाई आ चुके ना। अच्छा किवे हाल है? सही ठीक ठाक है तुसा?
3: दुकान ते कोते तेरा गोरांग सोदे बैठे मारे एक दोस्त बैठे फौजी राव निवास मेरे को।
0: केन केनी दुकान ते बैठे वैसे?
3: मैं अपनी दुकान ते बैठा।
0: अच्छा मैं क्या हसीब जनरल स्टोर ते बैठे हुए थे, जरा एक नजर मारो आज कितने खाने शैम्पू ते भरे पेन।
3: शैम्पू में सारे बड़े ढेर खाने भरे पेन
0: है ना जी, यानी के जितने भी कंपनियां दे शैम्पू हिन सब कुल ज्यादा तो कोई शैम्पू था नजर आंदा था केसन दा उसी पूरे गिनर बन रहा है। तो लगता है केसन शैम्पू तो आपको सही इस्तेमाल करना पता लग सी की भाई कुछ है इन शैम्पू के बीच है जी।
3: बहुत
0: मेहरबानी सही सन्ना तो मौजूद
3: है।
0: अच्छा चलो ठीक है सुना करो सही, चार को पांच बंदा ठीक है सही।
3: आपकी
0: जी बहुत शुक्रिया। और ये पप्पू हमारा एक सेल पॉइंट है कहाँ पर है ये रंगपुर अड्डा के ऊपर, और ये भी पप्पू पकवान वाले जो रंगपुर अड्डा के ऊपर रहते हैं हसीब जनरल स्टोर है जी, बहुत ज्यादा लोग खरीदारी करते हैं केसन की यहाँ पर। यहाँ पर हमारा बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है प्यारा लगना तो आप सबका हक है।

0: कुछ प्रॉब्लम्स।
1: अच्छा जी, ये आज जो हमारी कॉल मैसेज जिन्होंने किया था, हीरा, ये पहला मैसेज था इनका, तो हमें ये बताएंगे कि ये हमारा गिफ्ट जो है कहाँ से इजीली हासिल कर सकती हैं। अगर ये रंगपुर अड्डे पर हैं तो हसीब जनरल स्टोर से आपको ये हमारा गिफ्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप पहाड़पुर के अंदर कहीं मौजूद हैं तो हमें मैसेज कर दीजिएगा। अगर आपको जीशान जनरल स्टोर नज़दीक पड़ता है, या फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको नज़दीक पड़ता है, या जो है फ्रेंड्स एंड फैमिली ज़्यादा बेहतर है, अगर आप उस इलाके में हैं तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास जाएंगे, आपको आपका गिफ्ट जो है मिल जाएगा जो आज आपने गेस्ट किया है। और अगर रंगपुर साइड के ऊपर है तो डेफिनेटली आपने लिखा हुआ था पहाड़पुर का, तो पहाड़पुर के अंदर ही आप मौजूद हैं, ठीक है जनाब। तो आपने हमें बताना है, कंफर्म करना है, एक और मैसेज हमें कर दीजिएगा कि आप कहाँ से पिक कर सकती हैं अपना गिफ्ट, जो आप इतवार वाले दिन, संडे वाले दिन, ठीक है जनाब। आज जुमेरात है, कल जुमा, हफ्ता और इतवार और संडे वाले दिन आप अपना इनाम जो है फ्रेंड्स एंड फैमिली वाले भाई जो हैं, क्या नाम है उनका, शफकत भाई, आप उनसे जाके अपना हासिल कर लीजिएगा, जो आपने गैस किया कि आपकी ये प्रोडक्ट है। तो भाई आज हमने सवाल पूछा था कि केसन की कौन सी प्रोडक्ट है जो जिसकी सेल ज्यादा है, तो ये हीरा थी जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसके अलावा जो दूसरा जवाब था वो भी ठीक है, ठीक है ना, जवाब वो भी ठीक है, लेकिन चूंकि मैंने जो प्लानिंग की हुई थी, जो चीज मेरे माइंड के अंदर थी, ये BGM भी सेट था और सारी बातें, तो जवाब जो मेरे जहन में था मैं तो उसे ही सही कंसिडर करूंगा। वैसे बिल्कुल ठीक है जो लोगों ने कहा कि हाजमा कंट्रोल सिरप ऐसा ही है, वो भी इसके साथ हम पल्ला है, लेकिन मेरी सोच और मेरा जो जवाब था वो यही था, इस वजह से हीरा का जवाब जो है थे वो हमारे मुताबिक बिल्कुल ठीक था, ठीक है जी। और आप हमें कॉल कर रहे हैं और आपकी कॉल 03449363, आखिरी दो मिनट है। पहाड़ टांग के अंदर जनाब हमारा ये शैम्पू आपको कहाँ मिलेगा? जी जनाब, बिलाल मार्केट में आप जा सकते हैं, बिलाल मार्केट में नसीम जनरल स्टोर है, वकास ट्रेडिंग है, यहाँ पर भी आप टांग में हासिल कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है मंसूर जनरल स्टोर, आप उनके पास, हमारे मेन डिस्ट्रीब्यूटर, वहां से आप कर सकते हैं जनाब। और इस वक्त एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनको हम इस वक्त मौका देते हैं और देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, की ने हाल जी?
1: जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, कौन
2: है? ठीक ठाक। शैम्पू की जरा कीमत बताओ।
1: शैम्पू की कीमत है वैसे 390 रुपए। जी ताबेदार, जी ताबेदार, 690 रुपए जनाब हमारे शैम्पू की कीमत है और ये 200 ग्राम का है, ठीक है। अच्छा जी, जी फ्रेंड्स एंड फैमिली शॉपिंग सेंटर, ठीक है जनाब। हीरा कह रही हैं कि बिल्कुल ठीक हो गया, फौरन से जवाब इनका आ गया है और कह रही हैं कि मैं वहां से पिक कर लूंगी। तो इतवार वाले दिन जी आपने अपना गिफ्ट वहां से हासिल करना है, संडे वाले।

0: तरफ।
1: जी जनाब, ये तो हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, जो कि स्पेशल हमने किया है केसन के शैम्पू के ऊपर। अगर आप भी एक मयारी शैम्पू ट्राई करना चाहते हैं और ये समझते हैं कि ये हर किस्म के मसले के लिए हो, खुश्की के लिए भी हो, सर की सेहत के लिए भी हो, हेयर फॉल के लिए भी हो, बालों को सिल्की करने के लिए भी हो, तो आप आज ही खरीदिएगा केसन शैम्पू और इस्तेमाल कीजिए और फिर बताइएगा कि हम अपने दावों में किस हद तक सच्चे हैं। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह ने के हर

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बदरसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
4: बीमारी हक दे अवेला जी सुनत अमल दे, अवेला जी सुनत अमल दे।
5: उस कचेरे तासु तदा से अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ी दली हो, ढेर गर्जिदली कड़ी दली हो।
4: नो बिल्कुल मायूसके गई माँ, मायूसके गई माँ। अल शिफा दवाखाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े और द हकीम मौलाना नूरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले शे।
5: और द नूरु मालूमातों दे पारा पदग नंबर काल कवले शे
4: 0319-55-23-404।

जी अब मैं थोड़ा सा उर्दू में बात कर लूं ताकि मेरी सराय की बहन भाई जो हैं वो फिर नाराज ना हो, क्योंकि वो अक्सर नाराज हो जाते हैं कॉलर से भी, कॉल भी इस वजह से जब करते हैं तो अक्सर वो प्रोग्राम के बाद कॉल करते हैं। तो एक बात याद रखें, ये शो जो है जो मैं कर रहा हूँ ये तमाम के लिए है और आप सब के लिए है ये प्रोग्राम। जी जी बिल्कुल, इसी वजह से मैं अर्ज करता चलूं, मैं पश्तो उर्दू और सरायकी दोनों जानता हूं, दोनों में बात कर सकता हूं, और जब दोनों में बात कर सकता हूं तो फिर आप क्यों होते हैं परेशान? अरे ना हो ना परेशान जी, अगर आप हो जाते हैं परेशान तो फिर याद रखें परेशानी का कोई हल नहीं है। जी बिल्कुल, परेशानी का कोई भी हल नहीं है, परेशानी का वाहिद हल यही है कि आप अपने मसाइल को हल करें। मसाइल कैसे हल करेंगे? इस्तेमाल करें परमानेंट कॉस्मेटिक्स को। परमानेंट अगर बालों का मसला है तो फिर आप इस्तेमाल करें परमानेंट। अच्छा, अक्सर मेरे साथ ये हो जाता है कि जब मैं मोबाइल रखता हूँ और मैसेजेस को बैक करता हूँ तो फिर कोई ना कोई भाई कॉल कर देता है और मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, रिजेक्ट कर देता हूँ। वो भी सोच रहा होता है कि यार

आज लोगों को अपडेट हो गए हैं और लोगों की ये बताना नहीं करते अच्छे अच्छे मना नसी पर खुशहाल आजकल लोग अपडेट हो गए और लोगों की ये बता नहीं करते। अरे हम इतनी जल्दी नहीं सोते हैं आपका शो के बाद। अभी हमने ड्रामा भी देखना है। आराम को बच्चे मेरे साथ भी थोड़ा सा राय की मैं बात करूँ ना जी। वहाँ से की भी हाल है चंगा बताए से प्रोग्राम तो सुनते भी हैं से की भी लगते हैं से मेरा प्रोग्राम की भी लगते हैं चंगा लगते हैं से नहीं लगते से सुना ना सी भी खैर खरीये थे से क्या कहना चाह सो प्रोग्राम दिना से के को दुआ सलाम बस करना दोबारा डेरा ना।